तैसे राम नामा बिन बापुरो नामा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ताके रूप न कथने जाहि, ना हिमरह न ठाके जाहि, जिनकै राम बसै मन माहि, तथे भगत वसै के लोक, करह आनंद सच्चा मन सोई, सचखंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वरपंड, जे को कथै ते अंत न अंत, तथै लो लो आकार।

चक्र चिहन अरबरन जात प्रपात ना हिंदे रूपरंगर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूर्तन भव प्रकाश समितो कह जय कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गणिजय त्रे पवन मिहिप सुर नर सुर नेत नेत बंत्रन कैत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत तुजंग प्रयात छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं भेखे नमस्तं लेखे नमस्तं काय नमस्तं जाय नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं नामे नमस्तं ठामे नमस्तं कर्म नमस्तं धर्म नमस्तं नाम नमस्तं ताम नमस्तं जीते नमस्तं पीते नमस्तं बाहि नमस्तं टाहि नमस्तं नीले नमस्तं नादे नमस्तं छेदे नमस्तं गादे नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उदारि नमस्तं पारि नमस्तं सोएक नमस्तं अनेक नमस्तं भूते नमस्तं जूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निरदेशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं भूते नमस्तं लोके नमस्तं शोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं ब्रह्माने नमस्तं निदाने नमस्तं गाहि नमस्तं बाहि नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं सर्गे नमस्तं प्रभुगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं रंगे नमस्तं पंगे नमस्तं गम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं जाते नमस्तं पाते नमस्तं मज्वे नमस्तस्तज्वे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्धामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तं पेव नमस्तं जन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अमरने नमस्तं अमरने नमस्तं गिरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो स्तवन्दे नमस्तं निर्शाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त्रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेघ है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असुर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंद है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है।

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथि सहधि सहृ सहकृ स भगवती संत प्रसाद कहते कि आशिज दिशे क्या भिज भिस है क्या गंज कर्म है क्या पंज भरम है क्या भिज लोक है क्या आदित सुख है कि अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभ है कि धर्म तुज है कि आशोक भरने के सर्वा भरने की जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपा अनुप है

करुणालय है, नृप नायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करें, हरता रहें, परमात्म है, सर्व्यात्म है, आत्म बस है, जस के जस है।

ताम शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग्य नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय अनादम विभूते कलंकर रूप।

तूरत देश मलिंद मवासन मातिग जान के मान मलैया गाड़ गड़ान के तोड़न हार सुबतन ही चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दान वे फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कभी उबाच बेनती चौपाई।

दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जग बनायो देव दैत्य अच्छन उपजायो आदंत एकाय अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत परे बुरे की पीर पिछानत चीटी ते कुंचन अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछानै घट घट के पढ़ पढ़ की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचारे तुम सब।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अल्लाह पहे आठों नंदन प्रथम राग पहरो वे कर ही पंच रागनी संग उचरही ही।

तैसे राम नामा बिन बापुरो नामा। परम सम्मान सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार कृपा रहमत दा सदका आप जी ने अमृत वेले गुरु चरणा की हाजरी भर के लाहे प्राप्त किए हैं। सतगुरु जी की पावन बाणी दे शब्द कीर्तन वाहेगुरु सिमरन संगती रूप दे विच करदिया होया आप सारिया ने सत्कारयोग बीबी सुरजीत कौर जी की आत्मक शांति वास्ते जो उन्हां दे समूह परिवार वालों स्नेहियां वालों सहज पाठ करे किते सन, सत्संग जी तिन्हां दे भोगदे सलोक आप जिया ने सरबण किए हैं। सतगुरु रहमत करन आप सब की हाजरी दर प्रवान करन सतगुरु अते साध संगत जी, उस बिछड़ी हुई रूह आत्मा नूं सदीव काल लई अपने चरणा च नवासा बख्शन। आओ प्यार सहित सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी तिन्हां दे पासों अज दे इस पावन हुक्मनामे की विचार प्यार सहित सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: पांच चोर लगैया धर्म
1: सबके मन लोच
0: पैया कंचन
1: परिउपकार नित चित्त वते
0: तज करे हेरू आए लोग

संत जन हर मेलो हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जन बड़ भागी पाया

रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरे आराम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम बाणी गुरु गुरु है बाणी

कहे कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए।

चौथा जिनी ऐसा हर में सेवी है, ऐसा हर सेवी है नित्याई है, जो खिन में किल विख सब करी बिना साई।

गौण नाद प्रमे जैसे मृगाए प्रांत जे वाकू ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हीरो राम छोड़चित अंत न फेरो रहाओ जैसे ज्यो मीना हीरे पशुआरा सोना करते हीरे सुनारा ज्यो बखई हीरे पर नारी कौडा डारत हीरे जुआरी जह जय देखो तह तह रामा हर के चरण त्यावे नामा गुण मोको तार ले रामा तार ले मैं अजान जन तर बे न जानू बाप बीठला बाह दे रहाओ नरते सुर हो जात निमिख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नरते उपज सुर को जीतो सो अब खद मैं पाई जहाँ जहाँ तू नारद टेके नैक टिकावो मोहे तेरे नाम अवलम बहुत जान उदरे नामे की निज मत एह गोंड मोहे न लागती ताला बेली बछरे बिन गाए अकेली पानिया बिन मीन तलफे ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बादशाह छूटला थन चोकता माठन माखन कूटला नाम दियो नारायण पाया गुर पेट ते अलख लखाया जैसे बिखे हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा रा गौण बाणी नाम देव जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम तरमा हर हर कत जात कुल हरी सो हर अंधले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर कत नहीं दुख जमे रहाओ हर हर नागस हरि प्राण अजय मल कियो बैकुंठ उत्थान सुआ पड़ावत गण का तरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर कत पूतना तरी बाल का तनी कपटैक परी सिमरन द्रोपद सौती उदरी गौतम सती सिलानिस्तरी केसी कंस मंथन जन किया जी दान काली को दिया प्राण में नामा ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गौण पैरो पूत शीतला तावे खर बाहन ओशार उड़ावे हो तो एकर मैया लहो आन दे बदलावन देहो रहाओ सेव सेव करते जो नर त्यावे बर्द चढ़े डोरू टमकावे महामाए की पूजा करे नर से नार होय औतरे तू कही अति आद पवानी मुक्त की बरिया कहाँ छिपानी गौरमत राम नाम गौमीता प्रणमे नामा यों कह गीता बिलावल गौंड आज नामे बीठल देख्या मूरख को समझाऊ रे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आप त देख्या था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो भी आप त देख्या था रावण संत सेती सरवर सोई कर की जोए गवाई थी हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जह देहरा ना मसीत राग गौंड बाणी रविदास जो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मकंद मकंद जपो संसार बिन मकंद तन होए औहार सोई मकंद मुक्त का दाता सोई मकंद हमरा पित माता जीवत मकंदे मर्त मंगंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मकंद मकंद हमारे प्राण जप मकंद समस्तक निशान सेव मकंद करे बैरागी सोई मकंद दुर्बल तन लादी एक मकंद करे उपकार हमरा कहा करे संसार मेटी जात हुए दरबार तू ही मकंद जोग जुगतार उपजियो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीड़दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मकंद सेवा ताहू की गोंड ज्यो अरसर तीर्थ नावे ज्यो द्वादश शिला पुजावे ज्यो हो कूप तटा देवावे करे निंद सब व्यर्था जावे साध का निंदक कैसे तरे सर पर जानो नरक ही परे रहाओ ज्यो ग्रहण करे खुलकेत अर्पे नार सिगार समेत सगली सिमरत श्रवणी सुने करे निंद कवने नहीं गुणे ज्यो हो अनेक प्रसाद करावे पूम दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बिराना साडे करे निंद बोजो नी हांडे निंदा कहा करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ रामकली महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त युनि सैपं गुर प्रसाद कोई पढ़ता सहसा करता कोई पढ़े पुराना कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे त्याना आप ही कभी की सुना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान सरन प्रभ तेरी कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जीड़ा उब चढ़त है कबू जाए पयाले लोभ।

तृप्ति का विभिक्षा प्रमत प्रमत माधुपा तरी न जाय दुतर्मा काम ने आप सुकार कमावे आप भी जा पी खावे राखन को दूसर नहीं कोई तो निस्तर जो कृपा हुई पतत पुनीत प्रभ एको नाम अपने दास को दी जयदान कर कृपा प्रभ गात कर्मी शरण गही नानक का प्रभ तेरी अस राम कली महला पंजवा हे लोके सुपा नहीं भेट तो धर्म राय दुर्गे सुपावंत पुन गर्भ नहीं बसंत जानी संतर की बतराई कर कृपा दिनु हर नामा पूर्ण सजोग मिलाई रहाऊ गुर के चरण चित लागा तन तन सजोग पागा संत की तूर लागी मेरे माथे किल बेग दुख में सगली मेरे लाथे सात की सतैल कमानी तपते मन शुद्ध तपते हुई मां शुद्ध परानी चरका

हरे का स्वारी अपने हर हर नाम रसन नित अपने जिसके मत घात गुर तरह सुदास दिशा का ही करे जन्म मरण की चूकी कारण गुर पूरे गुरु पुर कुर्बान गुर पुर वेद पीठ ने आसु दर्शन पाए जिस हुई दयाली पा ब्रह्म जिस कृपा करे सा संग सो पव जल तरह

नानक हर जप उतरो पार। राम कली मोहला पंजवा ईदम ते बैसंतर भागै माटी को जल दैस त्यागे उपर चरण तलहे आकाश कट में सिंध की उपर घास। ऐसा समर्थ हर जियो आप निवखन विषय जी।

मेरु महादुख लागा ध्रुव त्रिभुरु गया सुख संपत्ति कहो सुख संपत्ति को आप तू दिखे साथ तुम्हारे विमान प्या जिसका इहू तन तन सो फिर लिभे अंतरे सहसा दुख पया अंतकाल कश साथ न चले जो जी सहसा जिसे मैं आदि पुरखे परंपर सुप्रभ कर नाम हृदय ले पार पया मुवे कौ रूवे किस सुना वै पै सागर सरार पया देख कुटाम गृह मंदरी साक्त जंजाल परार पया जा आई तां तिने बुलाए छाले तिने बुलाए लिया जो कुछ करना सो कर रहा बख्शन हरे बख्श लिया जिन इहो चाख्या राम रसायन तिन की संगत खोर पया रित सिद्ध बोध ज्ञान गुरु ते पाई मुक्त पदार्थ धरण पया दुख सुख गुरमुख साम कर जाना हर सुख मैं बिरक्त पया आप मार गुरमुख हर पाई नानक सही समाई लिया राम कली दखनी मोहला पहला जत ससंजम सी जत ससंजम सात तिरड़ाया सात सब्द रस लीना मेरा गुरख दयाल सदा रंग लीना ऐस रह एक लिवलागी सच दीप तीन रहाऊ रहे गगन पुर दिटू समय सर अन शब्द रंगीना सत वो को पीन परपुलीना जीवा रंग सीन मिले गुरु साजे जय रच रच ही कीर्त विचार पतीना एक मह सर सर मैं कहा ये सतगुरु देख दिखाई जिन की खंड मंडल प्रमंडा सुप्रभ लखन जाई दीप ते दीप को प्रकाशया तिरपन जूत दिखाई सचे तख्त सच ही मैली बैठे निरपव ताड़ी लाए मोह गया बैरागी जोगी कट के किंगरी भाई नानक सरन प्रभु ते छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला अट ओहट हाथ मड़ी कर छाया तरण गगन गल तारी गुरमुखे तीत वसुदारी संतो ममता बारी हमें सुखे तिरपन जोत तुम्हारी मनता मारी मन मने मनता बार मने मेरा के सतगुर सुध भी चारी सिंह सत अनाहत वाजे करकड़ जोत तुम्हारी पंच बीण

तारी अंतर सुखा बाहर सुखा हर जप मिल पै दुटाई जते राखे सह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संतपुरे हरणी।

करते प्रवंतन बारा बारी नाम दा नानक वडियाई तेरा संत जना रे नारे राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहित मन बजिया वाधाइया राग रतन प्रवाद भरिया शब्द गावणी आईया

की नी सच्चा मन वसाया जी जनसा तुद पाए पी परसनया लाभ लुभंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप उठा तने व्रत गुरती पाया भगता की चा निराली चाला निराली भगता हां केरी बिखर मार चलना लाभ लुभ अंकार ता तरसना बहुत नाय पूर्णा खन्यो तिखी वालू ने किए तुम्हारग जाना गुर प्रसादी जिनी हतो जार वासना समाणी कहे ना चाल भगता जुग जुग निराली ज्यो तू चलाए तुवे चले स्वामी होर क्या जाना गुरती जिव तू चलाए तुवे चले जिन्ना मार्ग पावी कर कृपा जिन नाम लाई से हर सदा त्यावी सुनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सु पावी कहे नान सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवे चलावे इहो सुइला सब सुहावा सबदू सुहावा सदा सुइला सतगुरु सुनाया इहो तन कह मान विचारे तुरु लिखे आए फिर कनेरे करे गला गली किने न पाया कहे नानक सब सुइला सतगुरु सुनाया पवित हुए सेजना जिनी हर त्याया पवित हुए गुरुमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित सुप वे संग सुभाया कह दे पे सुन दे पे से पे जिनी मन उसाया कह ना से पे जिनी गुरुमुख हर हर त्याया करमी सह जन बजेवट सह जी सह सह न जाई है जय सह सा किते संजम रह कर्म कमाई सह सह जीव मलीने के संजम तूता जाई मन तो वो शब्द लाग हसु रहो चित लाए गए नान गुर प्रसादी सहज उपजे सहसव जाए जियो मैले बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ये तरसना बड़ा रोग लगा मरण मनु भी सारिया वेदा मैं नाम तुम सुसुने नाही फिर ज्यू भी तालिया कहे ना जिनता तजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਊੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੀ ਸੀ ਵਣਜਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਧੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੀ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾਰੇ ਪ੍ਰਣੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰਣ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਤੀ ਵੀ ਖੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਤਨ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੂਤਨ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕੀਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਤਨ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵੀ ਚਾਦੀ ਖੂਬੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈ

राम कली महला पंजवा शांति ओंकार। सत गुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा, नीट खलुयाड़ा मेरा साजनड़ा, जानियाड़ा हर जानियाड़ा नैन अलुयाड़ा हर जानियाड़ा नैन अलोया कटकट तोया आत्म आत्म तेरे गूड़ा नाल होवंदा लै ना सुकंदा स्वाऊ न जाने मूड़ा माया बद बाता होशी बाता मिलन जाई परम तड़ा को ना गुर बिन नहीं सुजै।

अंत विनोद अनंत कूटे प्रे प्रीतम संगनी मन बात फल पाया हरि नानक ना बने शंते हिमकर उत्पन्न पापती पाप गुण गुणवंत जियो सखी सहेली गौ मंगलो ग्रह आय हर कंत जियो ग्रह लाल आय मंत आय ते सुंदर सोया वणत त्रिपण पूरे वणत त्रिपण पय हरिया दिक दर्शन मोहिया मिले स्वामी शिष्य पुनी मन जप्या निर्बल मंत जियो बिनवंत नारित करहो कृपा हरे त्रिविने त्री तरकंत जियो श्लोक संस साई जी के पवजल तारण हार सबती ऊचे जानिए नानक नाम प्यारे जिन जन से तिरे से दूरे से वीर नानक तेन बलिहारणे हर जब उतरे तीर स्वरूप चरण बिरात सब प्रेम मिटिया सगल कले जीव आवण जान दुख करे हर भक्त गया प्रवेश जीव हर रंग राते सहज माते तिलना मानते ही बीतरे तजाप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुणिद श्रीरंग स्वामी आत्मवादे जीव बिनवंत नारुकमय तहारो जुग जुग एक वेश जीव राम कली महला पहला दक्षिणी ओंकार इक ओंकार सतगुरु प्रसाद ब्रह्मा ओंकार ब्रह्मा उत्पाते ओंकार किया जिंचित ओंकार सैल जुग पे ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरी ओंकार गुरमुख तरी ओन व्यखर सुनो विचार ओन व्यखर त्रिपुण सार सुनो पांडे पांडे क्या लिखो जला लिख राम नाम गुरु गोपाला रहाओ सस सब जग सह जीव पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त हो भय चुन लय महान कमोती सब जय सूजय पढ़ पढ़ पूजय अंत निरंतर साचा गुरमुख दी के साच संभाले बिन साची।